कौडा पैसा रुपया सुनैया को बनज करे, रतन पारखु होए जहरी कहावई। कौडियां विचों पैसे, पैसियां विचों रुपये, फिर सोना, फिर तकड़ा व्यापारी हीरियां दा आखरी स्टेज ते पहुंच गया। भाई साहब जी कहंदे ने हौले हौले तरक्की कीती ते सब तो उच्ची मंजिल ते पहुंच गया ओ व्यापारी, पर शुरू होया कौडियां तो। कौडा पैसा रुपया सुनैया को बनज करे, रतन पारखु हो जहरी कहावई। जहरी कहाए पुन कौडा को बनज करे, पंच प्रवान में पत सटा घटावे। की वेखिया फिर ओई मैले कुचैले कपड़े पाए, ते थां थां ते होका देंदा फिरदा, ते कौडियां नाल फिर व्यापार शुरू हो गया। इतना हीरियां दा उच्चा व्यापारी हो के ते जिथों व्यापार शुरू कीता सी ऐसा धक्का लगा कि जिथों व्यापार शुरू कीता सी उथों फिर शुरू होया। लोग हसदे ने, मजाक उड़ांदे ने, कर्जे देण वाले सिर ते खड़े हो जांदे ने, लैण वाले भी। गुरु की साध संगत ओ मुसीबत विच फस जांदा है बंदा। लोग कहंदे ने आखिर तू कीता की। भाई साहब जी अपनी गल ते आउंदे हन, वचन करदे ने

पर लोक बिखे ऊंच पद पावई। छाड़ गुरुदेव आन देव को सेवक होए, निफल जन्म कपूत होए हसावे। लोकां दी सेवा करदा, संतां दी सेवा करदा, देव देवतियां नू मंदा होया मनुख उच्चे ते सुच्चे गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरणां विच पुज गया। पर की वेख्या, जेड़ा सीस गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अर्पण हो गया, कोई थोड़ी जी दुख सुख आ गया ते फिर थां थां ते भटकन लग पिया। कदी किसे संत कोल, कदी किसे कोल, कदी किसे देवी कोल, कदी किसे देवते कोल, ते फिर लोग मजाकां करदे ने, आ देखो गुरु का सिख किथे किथे भटकदा फिरदा। आ थोड़े दिन ही होए हए, एक प्रेमी गुरसिख नूं पुछया की हाल चाल है, कहिंदा कम तुर नहीं रहा, बड़ा परेशान हां। कहिंदा एक चिट्ठी आई है, ए भेजी है साईं बाबा वालिआं ने, आख्या एदा जाप करो तुहाडे मन नूं भी शांति मिलेगी, ते नौ निधियां अठारां सिद्धियां आउणगियां। ते मैं क्या भोले मनुख की करदे फिर, कहिंदा जिथों नौ निधि मिले असीं ओदा ही जाप करना है ना। एक वारी प्यार नाल बोलिए सतनाम, ते नाल लिखिया सी एदियां 500 कापियां छाप के फिर होर ना पासे वंड। नबज वेख लैंदे ने ए सुहागण किवें अपने मालक नालों टुटे ते नूं पतित करिए। ते थां थां ते ऐसियां दुकानां हन, गुरसिख नूं बड़ा सावधान होना पैंदा है, जिवें पति बिरता स्त्री सावधान हुंदी है। मैं क्या गुरमुखा, स्त्री सौरे नूं भी मत्था टेकदी है, जेठ देवर दा भी ध्यान रखदी है, ओहदा भी सत्कार करदी है, किसे संत नूं दुरकारना नहीं। सत्कार अदब हर धर्म दा करना है, पर जो स्त्री अपना मन ते तन अपने मालक नूं देंदी है, वो किसे दूजे नूं नहीं दे सकदी। इसे तरह अदब सारिआं दा कर, पर अपनी जड़ नूं ना भुल, नहीं तां मजाक दा कारण बन जाएगा। तू अज साईं बाबे नूं मनेगा, कल तेरे बच्चे थोड़ा बहुत ए भी सिक्खी तो पतित हो जाणगे ते मुनकर हो जाणगे। ना सिख ना हिंदू ना गोरे कुछ भी नहीं रहणगे, ते गुरु की साध संगत। गुरु रामदास पातशाह कहंदे ने, ए गुरु आप ही चाहे तां पल्ला पकड़ाए, नहीं तां असीं सिख तां छड़ जांदे आं गुरु। बाबा फरीद जी भी कहंदे ने,

अरे मेरे प्यारे, ओ माय बिलव्ड माइंड, कम होम एंड मीट द गुरु. सो द क्वेश्चन इज वेयर इज द गुरु, एंड गुरु सेज इन दिस लाइन, कर वसै हरे, ही रिजाइड्स इन योर ओन होम. So Guru is indicating towards our body, that Guru resides in our body. So he is asking the mind to come back and let's meet the Guru, which is in your own home.

अपराधी दूना ने वे जो हुत्ता मेरे का ऐसी स्थिति वाया क्या थी जारी देख सुधर जाए मिला पहला

अंडों राग सूही शब्द भी सूही कीर्तन भी सेव सूही भी शब्द है लाल रावया कमन गदीरी सखी बतावो मुझे मुझे

बड़ी निम्रता चल जाके भाई नंद लाल इस गल अपनी वड्याई समझते हैं, फखर समझते हैं कि मैं गुरु गोबिंद सिंह सत्य पातशाह के दर का कूकर बन गया हूं, कुत्ता बन गया हूं। गुरु गोबिंद सिंह सत्य

मैं पूछे तेनू इत खाण वास्ते की मिलता है। नंद लाल बड़े सरसारी विच कहण लगा सुनो सुनो भाई सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी वास्ते जिस वेले प्रशादा आंदा है थाल पोस के सेवादार बड़े एहतियात नाल बड़ी परहेजगारी नाल और बड़ी सावधानी नाल लियांदा ना ते मालक पलंग ते बैठ के उसनू छकदे ने छकदे ने ते फिर तू की करना है। आखन लगा जी मैं नींद ला के तले बैठ जाता हाँ उन्हां दे जोड़े विच बैठ जाता हाँ मंजे दे पलंग दे कोल बैठ जाता हाँ। सतगुरु बड़ी तबीयत नाल शेर होके आधा के प्रशादा छकदे ने मैं सच्चे पातशाह दे मुखारविंद वल नूं वेंदा रहिंदा हां तकदा रहिंदा नींद नाल तकदा हां ढिड भर के तकदा हां कि सतगुरु प्रशादा पै छकदे ने। जदों छक के सेवादार जल लिआंदा है चूल्हा करन वास्ते परोली करन वास्ते ते सच्चे पातशाह चूल्हा करके पानी धरती ते सुटदे हन उस वेले उन्हां दे दंदा नूं लगे हुए रेजे भोरे धरती ते डिग पैंदे हन। मैं पट के उठ करना हां ए मेरी खुराक है मैं किसी होर नूं चुकण नहीं दिंदा खुराक सुन ली मैं वो रेजे धरती ते पए हुए बड़े इतमीनान नाल बड़े प्यार नाल सकदा हां और तृप्त फिरदा हां अगा के रहिंदा हां हर वेले प्रसन्न हां ते ए मेरी खुराक है ए मैनू बख्शिश ए मैनू रहमत उदो होई है जदों मैं आख्या सी कि लै लो दिल ते मैं आख्या सी यक निगाहे जान फजाइश बस।

मैं तेरे दर्दा भिखारी हां मंगता हां। आरता मैंने मंगता जिथे आरता का अर्थ दुखी है उथे इसका अर्थ मंगता भी है। भगत तन्ना जी शब्द आरंभ करते हुए कहते ने गोपाल गोमन पृथ्वी पाल मैंने पालना करने वाला सर्व

0: हर नाम निदान है, गुरमुख पाया जाए तन मन शीतल हो,
1: शीतल हो, हर हर नाम निदान है,

0: श्लोक मल्ला पहला गौ ब्राह्मण को कर लाओ गोवर्धन नारायण तो दिन का तेरे माली तन मिल सखाई मंत्र पूरा प्रति बस समुद्र का पाई छोटे ले पखंडा
1: मांस खाने करे निवाज।

लिया है, पंडों में दोस्ती कौन चले रहा है, पंड मुआ पन पालिया पन बंदा सो के मुंडा खेल के मेरा जान पंडो ही पंडो ये पंडे बाजना कोई ना पंडे वारा कुछ जा सोए।

ढाली जो साहेब नाना हार गए ते बेहा पासा ढाली किचला ही उपर ढालिए जिन्हें गुरमुख नाम ध्याया तिन फिर बिघन ना हुई राम राजे जिन सतगुर पुरख मनाया।

राग सारंग सदियों तो प्रचलित एक सरल मधुर अते लोकप्रिय राग है। अनेक लोक गीतां दीआं धुनां इसे राग ते आधारित हैं। चरवाहियां दी वंजली अते सुपेरे दी बीन उते इस राग दीआं मधुर सुरावलियां आम सुनाई दिंदियां हैं। सुपेरे दी बीन चों जदों सारंग दी धुन निकलदी है तां सब मस्त होके नच उठदा है। सारंग दा प्रभाव अति ठंडा है, इसलिए सिखर दुपहरे गाया जांदा है। गुरु महाराज ने सारंग राग विच मन दी तपश मिटा के ठंड वरताउण लई सारा मजमून ही गुरु शब्द दी महानता दा रख्या है। ए पता भी दिता है कि नाम दी कमाई सतसंगत विच ही हुंदी है। काल खाए किछ हथों दे, नानक राहो पछाणे से। इस दा उपदेश इसे राग विच है। इस राग दे नादात्मक स्वरूप विच दोनों निषाद लगदे हन। गंधार अते धैवत बरजत हन। वादी ऋषव अते संवादी पंचम है। गायन समा है दिन दा तीजा पहर। सारंग राग विच पहले शब्द दा गायन कर रहे हन प्रोफेसर परमजीत सिंह जी। शब्द दी आरंभिक तुक जप मन जगन्नाथ जगदीशरो अते दूसरे शब्द नूं गायन कर रहे हन भाई दिलबाग सिंह भाई गुलबाग सिंह जी। शब्द दी पहली तुक है हर हर संत जना की जीवन। सरवण करो पहला शब्द जप मन जगन्नाथ जगदीशरो।

चार पराइयां। प्राइस्त्री वन लुक अंदर ठाणी, याद रख अजराइल फरेश्ता तिल पीड़े कान। भाई जोगा सिंह दे कन्ने च आवाज पई, भाई जोगा सिंह ने झट जेड़ा पैर पौड़ी ते रखिया सी हेठा कर लिया, पिछे मुड़ मैनू तां कोई वेख नहीं। प्यारी सास संगत अद्धी रात, भाई जोगा सिंह दूसरी वेरी फिर हुण कोई नहीं वेख, पर जिस वेले पौड़ी ते पैर रखिया फिर कन्ना आवाज आई केड़ी।

जोगा सिंह पहुंचे, हजूर ने दूरू ही तक देखे। प्यारी साध संग पी, जिस सिख तू बगैर मेरा काम नहीं सी ना चलता, वो भाई जोगा सिंह आ गया। आ जा जोगिया साढ़े कोल आ जा। भाई जोगा सिंह सुन के बड़ा हैरान, मैं तो समझिया सी कि गुरु साहब मेनू जोड़िया च खड़ा करनगे, पर ए तो प्यार नाल पै बुलांदे। भाई जोगा सिंह साहबां दे कोल पहुंचे, भाई जोगा सिंह भाई आखां जी आया, सोना सिख तू है सरदार बीबा, घर नार परिवार नूं छड़ के ते साडे नाल ते कीता प्यार बीबा। भाई जोगा सिंह सोचन, मन मैं तो समझिया सी गुरु अंतरजामी, जे अंतरजामी होंदा तां हुशियारपुर दी करतूत नूं जाणदा, जे हुशियारपुर दी करतूत नूं जाणदा होंदा तां मैनूं सजा दे, पर गुरु तां मैनूं प्यार पिया कर। ते जे गुरु अंतरजामी नहीं, जे गुरु इथों दियां नहीं जाणदा तां मेरी दरगाह विच किवें बां फड़ेगा, 12 साल एवें गुरु दी सेवा कीती। आखो सेवा अंतरजामी सतगुरु सोचण लग, सिख नूं काम दे कुंड विचों कढ़िया है, हुण अशरदक दे खाते च पिया पैंदा, गुरु नूं पता है शरदा तू हीण पिया होंदा। हजूर ने कहा जोगिया मेरे वल तक। भाई जोगा सिंह ने तकिया, इतना नूर सी साहबां दे चेहरे ते नजरां नीवियां। हजूर ने फिर किया जोगिया मेरे वल क्यों नहीं वेंदा, तकदा है फिर खांदा। तीजी वेरी जिस वेले साहबां ने किया जोगिया मेरे वल तक, भाई जोगा सिंह ने जिस वेले कलगीधर पातशाह वल तकिया, भाई जोगा सिंह हैरान हो गया, कंबण लग गया कि तकदा है कि श्री आनंदपुर साहब दे सोहणे तख्ते बहण वाला ते राती वेसवा दे चवारे ते पहरा देण वाला इको ही है। दोवे हथ रो पिया भाई जोगा सिंह, पातशाह मैं पापी हां मैनू बख्श, पर मेरा जेड़ा पोल है संगत च ना खोलो। आखो श्री भाई अगे पिछे सजा दे लिया, जे संगत च बोल न करो। हजूर कहण लगे जो गया मैं तो तेरी करतूत नू वेख के अडिठ पिया करदा, पर तू कहण लगा तेरे मन च फुरना बढ़िया कि गुरु नू पता ही कोई नहीं, मैं तो सब कुछ हर अंतर जामी जाने फिर बोलत आप, ते तू कहने गुरु नू पता है नहीं। तो भाई जोगा से कहने लगा महाराज ए भी चंगा होया, आज पता लग गया है कि तू अपने सिख दी रखिया कर। कलगीधर पातशाह जी कहने लगे एदा मतलब भाई जोगा सिंह तो मेनू अजमाया है, मेरी अजमायश की थी है। भाई जोगा सिंह चुप कर गया, ते माद गुजरी दे लाल दे सामने तकिया ते कहा जोगिया मैनू अगे भी सिखा ने बड़ा अजमाया, पर मैं इम्तिहान च पूरा अजमायश च पूरा, पहले जामे विच सिख ने अजमाया, बाबर दी जेल च अरदास कीती, मैं उथे पहुंच के ते बाबर दी चक्कियां पीटी। पंजवे जामे च दिल्ली दी संगत ने अजमाया के चंदू हंकारी दा नाता नहीं लै, तो जो गया मैं संगता दा हुक्म सिर मत्थे रखे, जे मैं कुड़माचारी दी असीत च चंदू दे घर जांदा चंदू मेरे ते फुल्लां दी वर्षा करदा, पर मैं अपने सिखां दा हुक्म मन के जिसले चंदू दे घर गया तां चंदू ने मेरे ते सड़दी बंदी रेत पाई, पर मैं अजमाइश ही पूरा बिधी चंद ने मेनू अजमाया, छेवे दुशाले लैके भजा जांदा पिछे बादशाह दी फौज आ, बिधी चंद ने छेवे पातशाह दा ध्यान करके पठियारी दे बलदे पट विच छाल मार। हजूर कीर्तपुर बैठे सिखो बड़ी गर्मी हो रही है जल लियाओ, छेवे पातशाह जी दे शरीर ते जिस वेले जल पाया सिंघां ने तकिया हैरान हो गए कि साहबां दे सारे शरीर ते छाले छाले हो। अधूर कहन लगे जो गया फिर बिधी चंद नू तत्ती वानी लगन दिती,
ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਈ। ਪਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਜ਼ਮਾਇਆ? ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨੇਤਰ ਸਜਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਜੇ ਸਾਈ ਅਜ਼ਮਾਉਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ

0: बादशाह मेनु बख्श, मैं भूल गया। हजूर कहन लगे जो गया रोई जा उतने तक जितने तक तेरे अंदरों हौमे अखा थानी पानी बन के बाहर नहीं निकलती। रोई जो गया तो मेरी अजमाइश की, तू तो ए भी कहन लग गया कि गुरु नु पता ही कोई नहीं। भूल गया रो रो के भाई जोगा सिख दा मन हौला फुल हो गया। अदू कहन लगे जोगिया भूल गए हां पातशाह, कलगीधर पातशाह जी कहन लगे जोगिया जी भूल गए हैं तो जा तेन बख्शिया। आखो श्री बस गल तो इतनी, भूल कर लेनी ए इंसानी फर्ज, पर जे भूल
1: असी प्यार नाल पढ़ो।

0: इतिहास लिखे प्यारी सास संगत भाई गंगा सिंह ने दो नामा नहीं आते दो नहीं।
1: You are listening to SeekNet PO, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

तब एक मानस दे ही पाए मानस जन्म अमूल पायो वृथा काहे गवाओ गुर सेवा ते भगत कमाई तब एक मानस दे ही पाए इस दे को सिवरे देव पजो गोविंद भूल मत जाओ पजो गोविंद भूल मत जाओ मन सिम का ही लाओ

जब लग बिकल पाई नहीं बाणी पज लै रे मन सारे पानी अब ना पजस पजस कब पाई आवे अंत ना भजया जाए ए तेरे असर ए तेरी बार ए तेरे असर ए तेरे बार कट पीतर तू देख विचार

साधो ए तन मिथ्या जानो या भीतर जो राम बस है साचो ताए पछानो पई प्राप्त मान देव रिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया।

गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन किए निरार्थ दाम। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन के निरार्थ दाम। फिरत बोते जुगहारे हो, फिरत बोते

कई जन पैकेट पतंगा, कई जनम गाजर मीन कुरंगा, कई जनम पंखे सर्प होयो, कई जनम पंखे सर्प होयो, कई जनम हैव वृक्ष जो मिला जगदीश, मिला की बरिया।